0: देवरानी मुलाय बोलावाने पनी देवर वलंता ठमा देवरानी मुलाय बोलावाने पनी बालोला कठमा घास काटनी कटर सिला के बाटर सिला वारे घर मेरो डाण गाँव शिलो के मूर्खा पर भरे
1: अब गिर
0: पानीला पर्यो तिमलाई दिनी दिनी घाम लागेर गाउँ

नमस्कार रेडियो सहिलो सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल आषाढ कृष्ण पक्ष सन 2026 जुलाई 3 तारिख आषाढ 19 गते शुक्रबार तृतीय तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी।

ब्रह्मांडा कुन सवाले दुर्योधन समान कर्णय समान दानव तागत श्री बलराम कैसरी हो सदवा तकै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी हो श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान हो शिशु जन्म मानुन बढाले पनि कृति उज्ज्वल हो श्रुत सहित का

धन्यगाडेरा पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेरा पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा।

सीता जी कल भेटी फर्कौला र फेर हामका हजुरमा गई विस्तार बिन्ती गरेर आई पसौला तिम्रो आहार भई। यति बात सुनि भन्न चिन्ती सुरसा मेरा मुखैमा पसी निस्कि जाऊ नै भने म बलले पक्रेर दरा घसी। भोकी मैलिँदा उरिन त कपाल खोरे कि केसाबुसाई लट्टा मात्र परे कि खाली भूमिमा रुँदै बसे कि तसाई राम चित्त दिएर मर्नु बढिया मानेर सीता तहाँ झन्नी मतलब ली खडी भैनी तक्रेर गई महा। एक दिन ही हनुमान